जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलीना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यईमा अलिना पाउ छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी मा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवनयाता शीतलता किमा जीवनयाता जीवित यैमा अलिना पं छेगु जीवनया पला पला न्हि फुकिमा किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

0: मैंने तो सिर्फ इश्क किया था और उस इश्क को तुमने मेरी गलती बना दिया।
1: लाइफ चेंजिंग कोट्स। जोखिम लिनु एक पटक को संभावित हार हो, जोखिम न लिनु सदैं को निश्चित हार हो। यो भनाई हो सोरेन किर्कगार्ड को।

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहां पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टू माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Does your computer UPS has no more backup time as before? Are you looking for battery replacement for your computer UPS? If yes, Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics has a solution for your problem. Protect your computer and hard disk drive from frequent power cuts with reliable, sealed, maintenance-free, long-life, SMF batteries. Also, we do exchange with your old batteries. Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics, Kulishwar, Kathmandu. Contact number 530-2678, 530-2678.
1: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब
3: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
4: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल
3: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स एवरी संडे 9 पीएम ट्यूसडे 6 पीएम
4: पहला नशा पहला खुमार
3: स्टेशन गिव्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
4: नया प्यार
5: Keeps FM 98.3 megahertz. Your companion. Your companion. Your companion.
2: On Keeps FM 98.3, this is Weekly 10. Segment Fresh Songs.
6: Song
7: Heroine
6: Artist
7: Maroon 5

0: Life-Changing Quotes。खुशी तब पाइन्छ जब तपाई आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न छोड्नुहुन्छ।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
2: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3।

0: प्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: पुरै एक घंटा तीनवटा मुभीज का सुपरहिट गीतहरु
3: 3 in 1
4: Every Saturday 9 a.m. and Thursday 6 p.m.

हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 एफएममा।

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: द वीकली काउंटडाउन शो ऑफ टॉप 10 इंग्लिश नंबर्स विद एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स Classic Choice, Info House, Fresh Hits, and many more. Do tune into Weekly 10. Weekly 10.
3: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
2: on KIPS 98.3 FM.

0: number 16.
1: इश्क का इत्र महंगा था पढ़ ले लिया
2: मूवी
3: ओ रोमियो
2: सॉन्ग
3: आशिकों की कॉलोनी
1: शाम

0: number 15.
1: खबर किस दिल वाले चोर नुमा
2: मूवी
3: पति पत्नी और वो दो
2: सॉन्ग
3: दिल वाले चोर
1: खबर

0: जी नहीं।
1: नेपाली पप गीतहरूको उतार चढाव कुन गीत कुन स्थानमा छ, साथै नेपाली पप गीतहरूबाट भरपूर मनोरञ्जन लिन सुन्न नभुल्नु होला। किप्स मोस्ट वान्टेड, किप्स मोस्ट वान्टेड।
2: हरेक शनिबार मध्याह्न 12 बजे, आइतबार राति 8 बजे र मङ्गलबार बिहान 9 बजे।
3: नेपाली सुपर हिट्स।

0: top song of the week at number one.
1: इंटरनेशनल
2: मूवी
3: है जवानी तो इश्क होना है
2: सॉन्ग

0: Joho Kips FM 98.3 MHz.
1: राजा मोतीवा मोती नाये वा ने पूछे चंगुटु खेले।
2: नेपाल भाषाया न्याही पूछे चौं मेता।
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक। स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।